उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: We'll be back after this short commercial break.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: time. Assalamu alaikum. Sunday, 21st of Zilhijjah, June the 7th, 2026. This is Radio Pakistan, the news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has emphasized on close coordination among all the relevant institutions to maintain law and order in the country. The President and the Prime Minister have called upon all the stakeholders to play their part in building a safe, resilient and nutritious food system. In Gilgit-Baltistan, polling for the general elections has begun. The Chairman Senate has called for dialogue and diplomacy for peaceful resolution of disputes.
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: किसी भी किस्म की ज्यादती जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हुकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें। यह पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया।
3: 101 FM.
4: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मखवी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: This is FM 101.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above 101.

0: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: Tune in to one above.

सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आँखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आँखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में। तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान करीबी राबते पर जोर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। मारूफ दानिश्वर, मुसन्निफ और अवामी तहरीक के बानी रसूल बख्श पलेजो की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और मालदीप में 4 मुल्की डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान आज अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगा।
1: We'll be back after this short commercial break.
2: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतलिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This is FM
4: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: be back after this short commercial break.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद. अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ. AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ. AE Power, the ultimate power solution.
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अल्शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बरास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-दाखला ने लाहौर में एक मुलाकात के दौरान मुल्क में अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरतेहाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। सदर मम्लिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुतअल्लिका फरीकों पर जोर दिया है कि वो महफूज, मजबूत और मुतवाज़न ग़िज़ाई निज़ाम की तैयारी में अपना किरदार अदा करें। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। और आज मालदीप में 4 मुल्की डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा।
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद-ए-आमा का ये पैगाम वज़ारत-ए-इंसानी हुकूक, हुकूमत-ए-पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM.
4: This is FM 101.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichhpur, Kohat, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: देखिए ड्रामा सीरीज फसाना मार्ट का जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखला ने लाहौर में एक मुलाकात के दौरान मुल्क में अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका फरीकों पर जोर दिया है कि वो महफूज, मजबूत और मतवाजन ग़िज़ाई निज़ाम की तैयारी में अपना किरदार अदा करें। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। और आज मालदीप में चार मुल्की डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। 101 FM।
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: तहफ्फुज हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक बारिश होने वाली है।

अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल हैं थोड़े? ठीक ठाक हो, खुश बाश हो, जिंदगियां किवें गुजरदियां पईयां? वैसे मैं भी थोड़ी दुआवां दे नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, खुश बाश हाँ, अल्लाह पाक दा करम है, सत्ते खैरी ने। मैं आ गया जे तुहाडा अपना बिरा आरजे गुलाम अली जावेद, तुहाडे अपने फैमिली चैनल एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर दे स्टूडियो तो। ते सारे भैणा ते बिरावां नूं, यारां नूं, दिलदारां नूं ते मिठड़े मन ठारां नूं आखदा जी आयां नूं ते सत बिस्मिल्ला। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो, खुशबाश हो, जिंदगियां किवें गुजरदियां पईयां? मैं भी थोड़ी दुआवां दे नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, खुशबाश हाँ, अल्लाह पाक दा करम है, सत्ते खैरी ने।

0: ਸੰਗੇ
1: ਹਾਏ ਅਸਾਂ ਕਿ ਤਾਈ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਵਣੇ ਨਹੀਂ ਓਲੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
2: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ
1: ਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ?
2: ਮੈਂ ਬਿਸਮਾ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੇ।
1: ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਿਸਮਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ?
2: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ। ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਕੋਲ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬਾਏ ਹੱਥ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
1: ये आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ऐसा है। आप लोगों की मेहरबानी है, अदरवाइज तो मेरे में कोई ऐसी खूबी नहीं है। आपकी मोहब्बतों से प्रोग्राम अच्छा जी जी।
2: अच्छा मैं बताती हूँ आपको, आपका शो, आपका वो जो टॉपिक और सवाल बड़ा अच्छा है
1: जी जी।
2: मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये लगता है कि जो मर्द हजरात होते हैं ना
1: जी जी,
2: वो ज्यादा बचत करते हैं, वो चार हाथ औरतों से आगे ही होते हैं हर मामले में। अगर वो बचत करना चाहें वो ज्यादा जहीन है, वो औरतों से ज्यादा अच्छे तरीके से बचत कर सकते हैं। और अगर वो उड़ाने पे आते, खर्च करने पे आते, तो वो फिर खर्च भी ज्यादा औरतों से करते हैं। अब मेरे नाना बू है ना, मतलब मम्मा बताती है कि वो कैसे थे, वो बहुत मतलब पैसे आते थे, वो खा लेते थे, वो खर्च कर देते थे। वो उनको ना गुड्डे वगैरह होते ना, तावे होते भरे भरे से, वो उनको इकट्ठे करने का शौक था। वो उनको जो डोरे होती हैं वो इतने इतने भरे पीने ला कर रखते थे। उस जमाने में ना मम्मा कहती थी 500 की ना मतलब एक मरला या दो मरला जमीन मिल जाती थी।
1: सही,
2: उनके सामने एक लेबर थे, तो वो जब उनके पास पैसे आते थे पीने लेते थे,
1: तो वो फजूल खर्च तो ना हुए, वो तो बचा तो होगी ना वो फजूल।
2: हाँ वो तो पीने शीने हमारे नाना भी देते थे ना, तो हमारी नानी जो थी वो बचत करती थी ज्यादा, तो उनकी वजह से। तो अगर मम्मा कहती है, अगर देखो मैं सोचती हूँ, अगर वो उन्होंने जो जमीने ली होती वो भी 500 की, तो आज हम कितने करोड़पति होते है ना। तो अगर अपनी घर की बात करूँ, घर की बात बताऊँ, तो मेरे पापा ज्यादा बचत करते हैं, और मेरी मम्मा अपने नाना को भी चली गई है, अपने पापा यानी मेरे नाना को भी पापा भी चले गए, तो उनकी वो नहीं बचत ज्यादा कर पाती। तो मैं भी ऐसी हूँ, मुझसे भी ज्यादा बचत नहीं होती।
1: कोई गल
2: मेरे में तो मर्द ही ऐसे है।
1: जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, क्या हुआ, खैर अल्लाह
2: आपको मेरे सवाल के जवाब समझ आ गया ना?
1: बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। लो जी, रुबीना जट्टी साहब मैसेज की ताकत ने, गुलाम अली जावेद आप दो शो किया करें, मेरी FM 1 वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको दो शो दें, टॉपिक पे औरत बचत ज़्यादा करती है। रुबीना साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, तुसी जिंदे रहो, थोड़ियाँ मोहब्बतों का शुक्रिया।

0: protests against systematic flaws in the education system. In the Diamond Jubilee Four Nation Football Tournament, the match between Pakistan and Afghanistan is being played at Mali in the Maldives today. And now the news in detail. President Asif Ali Zardari and Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif have called upon all the stakeholders to play their part in building a safe, resilient and nutritious food system. In their separate messages on the World Food Safety Day today, they emphasize that every individual involved in agriculture and food systems plays a vital role in safeguarding food safety. President Asif Ali Zardari said this year's theme draws attention to the role of science, data and evidence-based interventions in reducing the burden of foodborne diseases and improving food safety outcomes.
1: This is FM
2: 101. Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: तहफ्फुज हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: This is FM
4: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने तमाम मुतालिका फरीकों पर जोर दिया है कि वो महफूज, मजबूत और मतवाजन गजाई निज़ाम की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। हज परवाजों की वापसी का अमल जारी है। 34,000 पाकिस्तानी हुज्जाज कराम फरीजा हज की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। सदारती रेफरेंस पर दी गई राय में आजाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन की नशस्तों पर हुकूमत के मौकिफ की तौसीक करते हुए मुजाहिरों की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। और गजा में ताजा इसराइली हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं।
1: This is FM 101.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: तहफ्फुज हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: This is FM 101.
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
7: हमसे है रोशन ये जहां,
8: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: 13 June, PC Hotel Lahore aaiye aur dein Alshifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, ticket aur table ki booking ke liye abhi hamari website visit karein. www.alshifaeye.org.
3: Smile and dial 111-111 FM.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
0: सुनते रहिए FM 101.

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: किड़ किड़ किड़ किड़ कैन किणा गण कैन किणा गण किगरा किड़ किड़ किड़ किड़।

0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
1: हमसे है

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
3: सुनते रहिए FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने तमाम मुतालिका फरीकों पर जोर दिया है कि वो महफूज, मजबूत और मुतवाजन गजाई निज़ाम की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। कौमी तहफ़ुज़ खुराक के वजीर ने कहा है कि हुकूमत आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात में पोलिंग के खात्मे के बाद वोटों की गिनती जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: We'll be right back.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101
3: और अब वक्त है कमर्शियल ब्रेक का।
4: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
5: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
4: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
1: There's music. And then there's magic. One Above, FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो

0: सुनते रहिए FM 101।
1: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुतल्लिका फरीकों पर जोर दिया है कि वो महफूज, मजबूत और मुतवाजन गजाई निज़ाम की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। कौमी गजाई तहफ़ुज़ के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। हज परवाज़ों की वापसी का अमल जारी है और 34,000 पाकिस्तानी हुज्जाज कराम फरीज़ा हज की अदायगी के बाद वतन वापस पहुँच चुके हैं।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत
6: पंजाब।
1: मैंने सुना है खानदानी मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं।
2: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी।
1: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं।
3: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबा बंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता।
4: खानदानी मनसूबा बंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं।
3: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबा बंदी को आम करो।
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
6: 101 FM.
7: Avail up to 50% off at the Diners Mid-Season Sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
8: This is FM 101.
9: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
10: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
11: This is it. Today's hottest music, 101.
12: I like it.

Alright, assalamu alaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. Upcoming is Ban Muhammad Yusuf Oliver Live from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot, Multani, ne ki pura Pakistan aur Pakistan se bahir puri duniya mein radio.gov.pk par aap sun rahe hain Shining Frequency FM 101 ki. और FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ. ठीक रात के 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में जिसका नाम है शबगम. बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन प्रोग्राम में एक टॉपिक होगा जिस पर हम गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ लाइव एक्सक्लूसिवली और साथ साथ आप लोगों की पार्टिसिपेशन 4471 पर और टू कॉल 0511110101 2025 फेसबुक पे आप कमेंट्स कर सकते हैं. पोस्ट मौजूद है, पेज है हमारा www.radio.gov.pk. facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियली पेज है. क्या हो गया बदलने गया क्या क्या हो जाता है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सब के लोगों के सुनने का. और टॉपिक भी रखेंगे प्रोग्राम में, गपशप भी लगाएंगे आप लोगों के साथ, लेकिन क्योंकि बहुत सारा वक्त गुजर चुका है सो आगाज में आवाज उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की लाइव फ्रॉम द फेडरल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, द ट्विन सिटी ऑफ अल्बनी एंड इस्लामाबाद.

और जो लोग नाराज हैं वो जल्दी से राजी हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि क्या कह दिया डॉक्टर्स ने। Stay with us.

0: Lionware Music Box.
1: Bun radio da sachi. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जो लोग हमें सुन रहे हैं जहाँ भी सुन रहे हैं, और साथ ही हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे खान साहब को, अच्छी सी आवाज़ है तो मैंने को शामिल कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों से जो हमने गपशप लगानी वो ये है कि बचपन की कुछ यादें हैं और उनको भी हम साथ काफ़ी, क्योंकि जिनका बचपन पहले भी गुजर चुका है अभी भी वो बच्चे ही हैं, क्योंकि दिल तो बच्चा है, बच्चा है या अच्छा है, उसी बार आ गए हो। टॉपिक है जिसमें हम छोटी सी गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ साथ, ताकि ये बातचीत करने का सिलसिला जो है, एक तांता जो है वो बनता रहे, आप लोगों से गपशप लगाने का एक मुद्दा जो है हमारे पास होना चाहिए कि बचपन में जब आप स्कूल जाते थे, स्कूल ऑब्वियसली जरूर गए होंगे और जाते भी होंगे, अभी भी कुछ ना कुछ जाते ही होंगे, अब तो ये ए लेवल ओ लेवल्स और ये बहुत सारी जो है वो बुलाएं आ चुकी है, तो लंबी लंबी आपने नहीं छोड़नी बिल्कुल, और अब हमें साफ शफाफ तरीके से बताना है कि कितनी पॉकेट मनी मिलती, कितने पैसे मिलते थे खर्च करने के लिए। यार हम तो शरीफ से बच्चे थे, कभी मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो कभी एतराज नहीं किया। वैसे भी हमारे दोस्त जो है बहुत अच्छे थे, अच्छा वक्त था, सादे से लोग थे हमारी तरह। अस्सलामुअलैकुम यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? ज्यादा लेट नहीं हुआ आप, यही कोई 20 मिनट तक इंतजार का अपना ही मजा आता है ना। ये कहते हैं पहले पूरा एक हफ्ता जो है आप इंतजार करवाते हैं, उसके बाद शो में भी आप वैसे इंतजार करवाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का।

और अभी जो नेशनल कप चल रहा है ना, और लोकली जो जो लड़के खेल रहे हैं हमारे, ये मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ अभी भी छोड़ने कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है।

10 बजकर 30 मिनट हुए साथ सामिन, और आज हम जाएंगे ब्रेक के बाद में 11 बजे की न्यूज हेडलाइंस के लिए। दो लेजेंडरी वॉइसेस, बहुत खूबसूरत सी आवाज, खान मेरी हसन खान साहब और साहब

0: वेरी सिंपल एंड इजी एक टॉपिक है जिस पर हम गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ, कोई लंबी छोड़ी बात नहीं है। तो आपने हमें सिंपली बताना है कि आपको कितने पैसे मिला करते थे जब आप स्कूल जाया करते थे। सीधे सीधे जवाब है, थोड़े पैसे चलते थे, होते थे वैसे। आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस। ईद के दिन ना सही, खैर सही ईद के बाद। आप लोगों के कॉल्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है जी। रिमशा क्या कहना चाहेंगी आप?
1: मैं ये कहना चाहूंगी आपका टॉपिक ये
0: है कि पैसे डॉलर्स भी बता सकती हैं आप, पाउंड्स भी बता सकते हैं अगर मिलते थे तो।
1: ओके, मुझे उससे मिला करते थे 50 या ये 40, इतनी मिला करते थे।
0: 40 रुपए?
1: हाँ 40 या 50
0: रुपए। अच्छा ठीक हो गया, सही है।
1: और जब मैं जब मुझे कहीं जाना हो, ये वैसे आम रूटीन में मुझे सबसे ज्यादा मिला करते थे, लेकिन मैं जमा भी करती थी, लेकिन मुझे 100 या कभी 200 इस तरह की रूटीन मेरी बाद में चेंज होती रही है, मुझे कोई ले लेता या मैं उसे दे देती थी, उसके काम आ जाते थे, या उधारी चलती रहती थी मेरी तरफ से, यानी वो मुझसे मांगती रहती थी, उनको देती रहती थी।
0: क्या बात है, मतलब उन लोगों को पता था आपके पास पैसे हैं?
1: हाँ उनको पता होता था कि, क्योंकि ना वो मुझे एक ही आवाज से कहती थी कि रिमशा मुझे ना इतने पैसे चाहिए, प्लीज आप मुझे दे दें, मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगी। मैं बात समझती रहती थी, उनको देती रहती थी।
0: क्या बात है, मतलब उन लोगों को पता था आपके पास पैसे हैं?
1: हाँ उनको पता होता था कि, क्योंकि ना वो मुझे एक ही आवाज से कहती थी कि रिमशा

0: लेकिन उनसे मैंने कभी मांगा नहीं।
1: अच्छा, अब ऐसे लोग हमें नहीं मिलते वैसे।
0: नहीं मैं ना, मेरी फितरत यह है कि मैं अपने अगर किसी दोस्त को दे दूँ ना तो मैं वापस नहीं लेती। हाँ अगर पैसे ज्यादा हो उसको दो, जो मतलब ऐसे इंसान हो जो आपको है कि हाँ यकीन है कि मुझे वापस कर सकता है, वापस अगर मैं से दूंगी तो फिर उसे देने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये पैसे लेते रहे आपसे आपका फायदा उठाए तो उसे कुछ नहीं देने चाहिए, फिर उसे आदत पड़ जाती है।
1: आदत बढ़ जाती है, आदतें बड़ी खराब हो जाती हैं फिर।
0: बिल्कुल ऐसी बात है, आदतें खराब हो जाती है। स्कूल लाइफ में मेरे काफी अच्छी लड़कियां थी जो उनको आदत ही पड़ गई थी मुझसे पैसे मांगने की। मैंने कहा नहीं मेरे कॉल नहीं है, मेरे कॉल ना मंगा उनको सी, अच्छा मेरे प्यो ने मैंने दत्ते कोई नहीं आज। बिल्कुल
1: अच्छा चलें, ठीक हो गया, सही हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
0: और आप इसी तरह से मुस्कुराते हैं। अभी आपने मेरे एक सॉन्ग मुझे डेडिकेट करना है
1: इंशाल्लाह।
0: और एक शायरी भी, आप एंड पर जो शेर सुनाते हैं ये बहुत प्यारे लगते हैं आप।
1: ओए ओए ओए, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया,
0: ओके जी, हो गया था।
1: अल्लाह हाफिज।

0: कि हकदार जो समंदर का हो, हकदार जो समंदर का हो, अगर उसे अगर किनारा भी ना मिले तो मलाल तो रहेगा। समझ आई या रोर गई? हकदार जो समंदर का हो, उसे अगर किनारा भी ना मिले तो मलाल तो रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहां से?
1: धीरे धीरे रेगुलर होते जा रहा हूं। सरदार अर्शद फ्रॉम एबटाबाद।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं? एबटाबाद का मौसम कैसा है?
1: एबटाबाद का मौसम बहुत मजेदार है।
0: मजेदार?
1: जी जी।
0: किधर गए हो? सजी कोट वाली साइड पे?
1: जी जी, सजी कोट वाली साइड मेरा ग्राम है।
0: अच्छा अच्छा, हम आए थे एक बार यार, बड़ी मजे की। वो एक वहां पे है, वाटरफॉल है।
1: जी जी, अम्ब्रेला। जी जी, बिल्कुल वही मेरा लक है।
0: उधर शाम शाम बहुत है वैसे।
1: नहीं,
0: तो वहाँ पे कोई लैंड स्लाइडिंग हुई थी उस जब हम गए थे शायद।
1: जी, वो कब आप गए थे, आए थे सर?
0: जी
1: कब आप आए थे?
0: काफी टाइम हो गया यार, अब तो
1: साल डेढ़ दो।
0: नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा, तीन चार साल हो गए शायद। इससे भी ज्यादा हो गया। आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे, चक्कर लगाएंगे। अब तो टाइम इतना मिलता ही नहीं है, और जो होता है वो भी ऐसे गुजर जाता है।
1: परफ्यूम की प्राइस भी बहुत अप है।
0: हाँ, तो कितने पैसे मिला करते थे आपके?
1: जी जी जी।
0: कितने पैसे मिला करते थे?
1: पैसे कोई मतलब डेली की, वो मेरे पास में फादर से होगी थी, यूरोप की कंट्री में थे ना। तो मेरे पास ही होती थी सारी उनका, वो
0: वही है मतलब,
1: निकलवाना कैश विड्रॉ करना।
0: All in all, आप ही थे हैं?
1: जी जी, all in all में ही
0: था। फिर तो याशी की होगी सही आपने।
1: माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बड़ा सारा बचपन बहुत सोना गुजरा है।
0: तो अभी खुद मेहनत करनी पड़ती है।
1: मैं भी सर यकीन करें, सालों के में 30,000 रुपये कमाया पूरे साल में।
0: क्या मतलब, मक्खियों शहद बेचते रहे आप?
1: मतलब ये बचत की है सर।
0: अच्छा, बचत की है।
1: जी जी जी, ऐसा मेरा वर्क ही नहीं है सर, मैंने आपको पहले भी बताया था।
0: चले जी, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फरमाए।
1: आमीन आमीन।
0: तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: सर मैं कहना, शो बड़ा जबरदस्त है आपका।
0: थैंक यू।
1: तो बड़े पुरानी पुरानी कॉलर भी आ रहे हैं, कोई न्यू भी आ रहे
0: हैं,
1: अच्छा लग रहा है।
0: सही, चलें गपशप लगाते हैं फिर इंशाल्लाह। बाकी मामला भी
1: एक सॉन्ग है, वो मुझे कैंडली वो बता देंगे, उसका टाइटल ये है।
0: बताएं।
1: निम्रा है, निम्रा, आई डोंट नो बाकी क्या उसका नाम है, निम्रा फीमेल कोर वो है, सिंगर है ना?
0: हाँ, निम्रा मेहरा।
1: जी मेहरा, मेहरा
0: जी।
1: अगर हो सकता है चला भी देना, ये मुझे वो यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना। टाइटल है वो, कहती है नखरे मेरे, इस तरह का कुछ है सर गाना मेनू का। चले मैं कोशिश करता हूँ,
0: मुझे मिला तो मैं चला दूंगा। ठीक है,
1: टाइटल उसका बता देना।
0: ठीक है।

मैं देखता हूँ, ऐसे मुझे याद नहीं आएगा मुझे। ओके, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और मोहब्बत वहीं का रुख करती है जहां से आती है। बात गहरी थी, मुझे समझने में एक उम्र लग गई है।

पता नहीं आपने लिखा क्या है इसमें, ना तो इसमें आपके मुझे कोई नाम की समझ आ रही है, ना कोई आपके टेक्स्ट मैसेज की मुझे कुछ क्लियर समझ आ रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं।

Das bist gerade alles mit Ruhe an dem 101 Time Pakistan Standard Time. Abloge Live Calls, Shamil Kurunga, 051-111-0101 920-2540. अपने सेल फोन के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम पैगाम, उस मैसेज को आप सेंड करेंगे 4471 पर, और एक मुमकिन जरिया है और मजीद आपके हमारे रबते का कि आप कमेंट्स कर सकते हैं facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियली पेज है, और जिन लोगों ने अभी ट्यून किया उनको वेलकम करेंगे। और टॉपिक है आज का कि बचपन में आपको स्कूल जाते हुए कितने पैसे मिला करते थे।

हस्सी तेरे होते मरदे नहीं। बड़ी शॉर्ट सी बात किसी ने की है कि मेरे मरने के बाद जो होगी उस कदर पे आओ कि जीते जी इंसान की वो कदर ना हो और टूर गए यार मोहब्बत वाले, बाद में फिर आप रोए पछताएं और वक्त बहुत होता है लोगों के पास। लेकिन हम अपनी एफर्ट वहां पे ज्यादा सर्व करते हैं जहां पे फैंटेसी का दौर है। फैंटेसी

और ये वक्त कितनी जल्दी से गुजर जाएगा इससे इसका अंदाजा आप हर गुजरते हुए पल से लगा सकते हैं।

आप क्या समझते हैं जो लाइव लोग गा रहे होते हैं, स्पेशली अगर ओरिजिनल सिंगर भी होते हैं तो किसी कॉन्सर्ट में किसी ऐसी जगह पे, तो क्या वो दोबारा लाइव गाते हैं? नहीं, बहुत कम होते हैं। लाइव सिंगिंग बहुत डिफिकल्ट है।

भाई सजनी ने वो इतनी बारी पास बुलाया, लेकिन सजनी ने क्या कि नहीं असी भी क्या नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਸਦੇ ਹੋ जी, वापस आते हैं न्यूज हेडलाइंस के फौरन बाद। आप लोगों की पार्टिसिपेशन शामिल करेंगे फेसबुक की। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शबगप, जस्ट इन केस यू फॉरगॉट, माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इस अफरेत के खिलाफ जंग जारी रखने के कौमी अज़्म का इदा किया है। कौमी गजाई तहफ़ के वजीर ने कहा है कि हुकूमत आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। सरमायाकारी बोर्ड के वजीर ने कहा है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलत के लिए रेगुलेटरी असलाहत पर काम कर रही है। आज मालदीव में पाकिस्तान अफगानिस्तान को 2-0 से हराकर डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है।
1: दिस इज FM 101
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

ओके जी, ख्याल मुश्किल हुआ चाहते हैं 10 मिनट। तेरा मुखड़ा हसी जादू कर गया। अस्सलाम वालेकुम, आफ्टर लॉन्ग टाइम लिसनिंग योर शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शहजादी मंजूरा मशद मौजूद है इस्लामाबाद से। मैं ईद के लिए गांव गई हुई थी और वहां पे आपका शो नहीं सुन पाई, सो थैंक यू सो मच।

हाय, लोगों को क्या, वो समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो लोग आते हैं ना शोज करने के लिए, उनका एक ही काम होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. अपने माइंड को साफ रखा करें. अस्सलाम वालेकुम, आई एम आसमा फ्रॉम गुजर खान. तलब क्या होती है उन निगाहों से पूछो जिनके सामने लोगों का हुजूम हो मगर फिर भी वो एक ही शख्स को ढूंढती रहें. ओके,

0: ओके जी, मजीद कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, तारुफ करवा दे, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सर तख्त भाई से बात कर रहा हूँ, अशरफ खान बात कर रहा हूँ।
0: अशरफ खान बात कर रहे हैं तख्त भाई से, कैसे हैं आप? ठीक हैं,
1: अल्लाह आपको खुश रखे सर।
0: थैंक यू सो मच सर। कितने पैसे मिला करते थे जब आप छोटे से हुआ करते थे स्कूल जाते वक्त?
1: यार उस टाइम तो मुझे 1 रुपए मिलता था, वो भी बड़ा मुश्किल से। अम्मी को बोलता था भाई अम्मी जान 1 रुपया दे दो, हमने स्कूल जाना है।
0: तो फिर आसानी से मिल जाता था।
1: बड़ा रो रो के मिल जाता था, सही है ना सर? फिर जब अच्छे हो गए तो डबल मजदूरी भी करता था और स्कूल भी पढ़ता था, दोनों ही करता था।
0: वैसे आप समझते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो साथ मजदूरी भी करें और पढ़ाई भी करें, ये चीजें कर सकते हैं?
1: सर मोइन नहीं करना, हमारा जो सुबह सरहद है ना,
0: हाँ वहां पे तो जाहिर सी बात है, मैं तो उस चीज के तो बड़ा
1: यहाँ पे यकीन जानो मैं 2019 से आया हूँ तख्त भाई इस्लामाबाद से। मैं अशरफ खान आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि अब तो रोहित शेख मेरा खास दोस्त है।
0: ठीक हो गया। वैसे अभी के मैं जो रूटीन है जो बच्चों का या आजकल के मामलात हैं, मैं समझता नहीं हूँ कि इतनी टफ जो है वो रूटीन उनकी कभी रही होगी।
1: बस सर आपकी बात बहुत अच्छी लगी और वेलकम सर, वेरी नाइस,
0: थैंक यू सो मच।
1: लेकिन लेकिन ये जो आप बता रहे हैं इस तरह यहाँ पे तो हो नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे हो।
0: ऐसे तो है, बिल्कुल ऐसे ही मामला आते हैं। हेलो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।

क्योंकि इंसान के पास जब जिंदगी में ऑप्शंस बहुत सारे हो ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन ऑप्शंस के चक्कर में वो किसी बहुत अच्छे इंसान से आ दूर बैठता है।

जब यही बातें इंसान किसी और की जुबान से सुनता है तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और वही बात है, अगर कोई अपना कर रहा हो तो बहुत बुरी लगती हैं। सो इसीलिए खामोशी खुदा की जुबान है, बाकी सब कमजोर तर्जुमे हैं। सो खामोशी, अब खामोशी।

11:20 हुआ चाहते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और बरीरा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सच ए नाइस शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।

हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, और हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ समझते हैं। सब अगिला का

हाथ से शीशे के उस पार से आवाज आई है कि दोबारा कि हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, और हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ समझते हैं।

कि मेरे हम सुखन का ये हुक्म था कि कलाम उससे मैं कम करूं, मेरे होंठ ऐसे सिले के फिर मेरी चुप ने उसको रुला दिया।

जी आपको वेलकम करते हैं स्पेशली सेगमेंट ओल्डी गोल्डी नंबर्स के साथ। और बाज़ महरूमियाँ सिर्फ किसी चीज़ के ना मिल जाने का दुख नहीं होती हैं, बल्कि उस एहसास का बोझ भी होती हैं कि शायद हम इसके हकदार थे। जब इंसान पूरी सच्चाई, मेहनत और खलूस के साथ किसी ख्वाब, रिश्ते या मंजिल की तरफ बढ़ता है, तो उसे महरूमी दिल में खामोश खलिश छोड़ जाती है कि हकदार जो समंदर का हो, उसे अगर किनारा भी ना मिले तो मलाल तो रहेगा। एक गहरी हकीकत बयान करता है। जिंदगी में बाज लोग अपनी वुसत, ज़र्फ, काबिलियत और मोहब्बत के बाइस बहुत कुछ पाने के मुस्तहिक होते हैं।

के बाद फिर वहीं पे आ जाती है। और कि हकदार जो समंदर का हो, उसे अगर किनारा भी ना मिले तो मलाल तो रहेगा। हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठकर तुमने वादा किया था।

देती नहीं अमां जो जमीन आसमान तो है, कहने को अपने दिल से कोई दास्तान तो है। यूं तो है रंग जर्द मगर होंठ लाल है, सहरा की वुसतों में कहीं गुलिस्तान तो है। एक चील एक ममटी पे बैठी है धूप में, गलियां उजड़ गई हैं मगर पास बांध तो है। आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। मुझसे बहुत करीब है तो फिर भी है मुनीब, मुझसे बहुत करीब है तो फिर भी है मुनीर, पर्दा सा कोई मेरे तेरे दर में आ तो है।

इंसान के अंदर दो कमजोरियां बहुत आम होती हैं, बुलाने के काबिल बातों को याद रखना और याद रखने के काबिल बुलाते जो बातें होती हैं उनको भूल जाना।

क्योंकि मोहब्बत में मजबूरियां आए तो सब मजबूरियों को मजबूर करके मोहब्बत चुनना, अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना। क्योंकि आज अगर जज्बात में आकर मोहब्बत छोड़ दी तो जिंदगी भर लाश की तरह गुजरेगी, और जिनकी वजह से मजबूर होकर छोड़ेंगे वो भी आपका साथ कभी नहीं देंगे, और कुछ रह जाएगा तो जिंदगी भर का पछतावा।

हम लोगों से अब इजाज़त चाहनी है इस दुआ इस यकीन के साथ। और क्या एक शेर याद आ गया कि हमें समझाओ ना मोहसिन, हमें मालूम है सब कुछ, मोहब्बत मशवरा होती तो तुमसे पूछ के करते हैं।

आप लोगों से इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। इस दुआ इस यकीन के साथ आप लोगों से इजाज़त लेंगे कि हर आने वाला पल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जाने अनजाने में अगर कोई भी बात आपकी समख राशि का सबब बनी हो तो माज़र चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा। इंसान है, इंसान होने के नाते गलती हो सकती है, लेकिन कतन मकसद नहीं होता कि आप लोग हर्ट हों। आई हैड अ वंडरफुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी, और जब भी मुलाकात होगी, होपफुली एक नए अज़म के साथ, और भूले नहीं होंगे आप। लेट्स प्रूव इट, या आप में साबित करके दिखाने, डोंट हैव अ शॉर्ट मेमोरी। तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें, मुकद्दर है या तन्हाई ये ना मालूम था हमें, करके तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें, अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें, आ जाना बेटा, आ जाना इस तन्हाई को के फिर से दावत हम देते हैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज़।

तो जनाब उस पर आपने कमेंट करना है, प्रोग्राम में शामिल करूंगा। इसके अलावा 9202540920254 नंबर है जिस पर आपकी कॉल्स होंगी।

0: तो जनाब, सबसे पहली कॉल मेरी अम्मी जान की ख्वाहिश थी कि वो कॉल करें प्रोग्राम में, और उनकी कॉल मुझे मौसूल हो गई है, वो शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू।
1: मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे, अल्लाह आपको कदम कदम पर कामयाबियां नसीब करे। मेरे बेटे, मेरी दुआएं आपके साथ है हमेशा के लिए। अल्लाह पाक आपका साया आपके बच्चों के सर पर सलामत रखे, और आपको कदम कदम पर खुशियां नसीब हो।
0: बहुत शुक्रिया अम्मी जी, बहुत शुक्रिया। अब आप आराम करें।
1: आखिर में मैं एक पंजाबी का जुमला बोलूंगी।
0: जी जी।
1: मेरे बेटे मेरे बेटे दा जिथे पैर होवे उथे खैर होवे। आमीन सुम आमीन
0: आमीन। बहुत शुक्रिया अम्मी, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।
1: ओके, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज। तो जनाब, ये एक यादगार कॉल मेरी अम्मी की जानिब से। रब ताला मेरे सर पे इनका साया हमेशा सलामत रखें। और स्टेटस के लिए जनाब मैंने मैसेज किया है अभी अभी, और चंद लम्हों में स्टेटस अपडेट हो जाएगा।

तब तक हम एक छोटा सा ट्रैक शामिल करते हैं क्योंकि मुझे कुछ कॉल्स भी लेनी हैं और जी जनाब, एक लेटेस्ट ओएसटी है, इसको शामिल करते हैं। और इससे लेटेस्ट तो नहीं है, 3-4 महीने हो चुके हैं। इससे लौट कर आऊँगा तो सिलसिला गुफ्तगु बांधेंगे। जनाब मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन। इस खूबसूरत से ट्रैक के उस पार मिलता हूँ, सुनते रहिए।

0: क्या ये मोहब्बत का नक्स नहीं है, तुम्हारी आंखें बड़ी नटखट है, तुम्हारी आंखें। चूंकि मेरा गला खराब था लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं सुना
1: मैं ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का।
0: और आपके लिए गिफ्ट है और हमीद गुल साहब के लिए सरप्राइज हो जाएगा। शायरी को गुनगुना दिया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।
0: आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह आप ये खूबसूरत बदल जाते रहे।
1: थैंक यू
0: सो मच, और सबके लिए बहुत सी दुआएं, स्पेशली आपके लिए। अल्लाह हाफिज,
1: बहुत शुक्रिया। तो जनाब, साथ आपने देना है 4471 पर भी आपके पैगामात होंगे। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने 101 यानी 101 लिखना है, स्पेस के बाद अपना पैगाम, अपना नाम और जगह के नाम के साथ 4471 पर भेज देना है। facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, स्टेटस अपडेट हो चुका है आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल के नाम से। पेज को लाइक भी कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, प्रोग्राम में शामिल करूँगा। एक कॉल और लेते हैं जनाब, फिर एक सॉन्ग की जाने बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, तबीयत ठीक है। आपको बहुत बहुत मुबारक आपको सालगिरह।
1: बहुत शुक्रिया आपका। हमना फ्रॉम जर्मनी वाया लाहौर।
0: जर्मनी मैं कब की आ चुकी हूँ।
1: अच्छा,
0: छुट्टियाँ खुल गई थी तो इस वजह से मैं फिर वापस चली।
1: अच्छा, अब इस टाइम आप जर्मनी से कॉल कर रही हैं।
0: यस।
1: चलें, बहुत शुक्रिया जी, आपने याद रखा इतनी, आपने उस दिन का याद।
0: आपको प्रोग्राम तो बहुत कम सुनती हूँ मैं, तो फनी प्रोग्राम सुनती हूँ, तो आप ये प्रोग्राम एक दो प्रोग्राम सही कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मैं सुनती हूँ।
1: अच्छा, मैं तो फनी तो नहीं कर रहा, खैर थोड़ा बहुत शोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो है ना, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे।
0: वाह वाह,
1: मैं तो इस पे बिलीव करता
0: हूं। मैं सुन रही हूं, मेरे का आप फनी फनी प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं सुनना चाहिए आतिर भाई।
1: अच्छा,
0: सुनती हूं मैं, कॉल नहीं करती ना, कमेंट करती हूं।
1: तो इसी वजह से मुझे ये पता लगा कि लोग डरते हैं मेरे से।
0: आप से?
1: हाँ, कि ये पता नहीं क्या
0: लगता है।
1: अच्छा
0: जी जी, सब बात है,
1: तो बस वो डर ही खत्म करने की कोशिश है कुछ दो चार प्रोग्राम्स में।
0: मैं तो अपने पेरेंट्स से डरती हूँ कि वो रेडियो नहीं सुनते थे, रेडियो पे कॉल नहीं कर लेते थे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, सही।
0: इस वजह से वो रेडियो पे कॉल नहीं करती, सुनती हूँ
1: जर्मनी में भी। अच्छा अच्छा, चलें, सही। नहीं कुछ नहीं कह रहा, और क्या कहेंगी?
0: बस यही, मैंने आपकी सालगिरह मुबारक कहनी थी, मेरी वजह से कॉल की है, वो भी चुपके की है।
1: अच्छा, छुप के किया, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
0: आपका। मैं सलाम कहना चाहूंगी।
1: हाँ, कहें सलाम, कहें
0: अनिला भी और इंशा और सजाद भाई को बहुत बहुत सलाम, खुशी रिमशा को सलाम, ठीक है,
1: ठीक है।
0: और आपके लिए बहुत सी दुआएं।
1: रिमशा जो हमारी आरजे हैं वो ना
0: जी,
1: रिमशा हमारी जो आरजे हैं फिर 101 की, उनको सलाम भेजा ना आपने।
0: लिस्टर भी है और आरजे भी है, दोनों को सलाम।
1: अच्छा, एक रिमशा
0: भी आती है।
1: अच्छा, एक लिस्नर भी आती है रिमशा।
0: हाँ हाँ, लिस्नर है, लाहौर से आती हैं।
1: अच्छा, आपने उनको भेजा, ठीक है।
0: इस्लामाबाद का मौसम कैसा है पाकिस्तान का, बताएं जरा सर।
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत। आए
0: हमारे बहुत सर्दी पड़ रही है। अच्छा, सर्दी है यहाँ पे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: मेरे का मैं पूछूंगी किसी को, पाकिस्तान का मौसम कैसा है।
1: चले, बहुत
0: शुक्रिया,
1: सलामत रहे, आबाद रहे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलें जी, ऐसा है कि एक ट्रैक शामिल करते हैं, इससे लौट कर आऊंगा तो रिमिक्स ट्रैक है जनाब, और इसको सुनते हैं, इससे लौट कर आऊंगा तो गुफ्तगू का सिलसिला बांधेंगे। सुनते रहिए, मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद, 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। इस ट्रैक के उस पार मिलता हूं।

0: जी बिल्कुल।
1: यहाँ पे अच्छे केक बनते हैं, 4 घंटे तक वो फ्रेश रहेगा।
0: अच्छा जी,
1: हाँ
0: आप मुझे यही भेज देना, मैं खा
1: नहीं, वहाँ
0: लूंगी।
1: वाला इतना मजाक नहीं है।
0: ओके
1: आप मेरी तरफ से एक वो पेस्ट्री खा ले, जाके देख
0: पेस्ट्री?
1: ले।
0: नहीं, मैंने अभी चीनी खा ली, मैंने कहा चले आज कहीं ना
1: चलो
0: कहीं
1: ये
0: मीठा
1: भी
0: खिला
1: अच्छा,
0: दिया।
1: ये भी अच्छा है, मुँह मीठा कर लिया आपने, अच्छी बात है।
0: हाँ जी, मैंने खुद ही कर लिया। और आप कह रहे थे ना, अभी हम ना कह रहे थे ना कि डर लगता है, बिल्कुल आप एक आपसे डर लगता है, मुझे मुझे भी डर लगता है, और एक दिशान भैया से।
1: सही, इसका मतलब है हम दोनों टी प्रोग्राम कर रहे
0: क्योंकि जब भी आपको
1: हैं।
0: लड़कियां कॉल करती हैं ना, आप बिल्कुल सीरियस होती हैं, बंदा डर जाता है, कोई बात ना मुंह से निकल जाए, बंदा डांट ही ना दे अगला।
1: हमें असल बात पता लग
0: इसलिए ना आपको
1: अच्छा
0: लड़कियां जो है ना डर डर के कॉल करती हैं, क्योंकि आप ना अभी आप मुस्कुरा रहे हैं ना, तो देखिए अभी लड़कियां आपको कॉल कर रही हैं, बस आप सीरियस हो जाते हैं, फिर डर जाती हैं बेचारी।
1: चलो, अभी थोड़ी देर में मैं हो जाऊंगा सीरियस।
0: नहीं, आप सीरियस ना हुआ करें, डर
1: अच्छा
0: जाते हैं बच्चे, बच्चे सुन रहे होते हैं आपको।
1: चलें सो जाओ, नहीं तो आतिर सीरियस हो जाएगा। ऐसा क्या कि हमारे बच्चों को सुलाती हैं?
0: ना मैंने कहा सो जाओ, वरना आतुर भाई और जिशान भी आ जाएंगे।
1: अच्छा अच्छा है ये, अच्छा है, अच्छा है।
0: और मेरा भी सलाम अनिल आपी, शहजाद अंकल, बर्फी वाले अंकल, मारिया आपी, और
1: कौन से
0: साथ
1: वाले
0: में
1: अंकल?
0: हमना को खसूसी मेरा भी सलाम, और जो आपके इस्लामाबाद के जितने भी हैं सर, उनका भी मेरा सलाम। और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, इसी तरह अपने हंसना है, सीरियस नहीं होना, बस
1: चले ठीक है,
0: इतना जो
1: मैं
0: है ना, फिर बच्चे रोने लग जाएंगे।
1: अच्छा चले, बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें,
0: ओके
1: बहुत
0: जी,
1: शुक्रिया।
0: अल्लाह हाफिज।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई।
1: थैंक यू,
0: अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही हूँ।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहें,
0: और
1: सलामत
0: अल्लाह
1: रहें।
0: ताला आपको बहुत ज्यादा खुशियां दे, आपका बुलंदियों पे मुकाम हो, आपकी हर मुश्किल दूर हो, आपकी सोचने से भी पहले आपकी सोच हर पूरी हो जाए, बीमारियां दूर हो, अल्लाह ताला आपको उम्रा हज कराए और आपकी हर दिली तमन्ना पूरी हो, आमीन।
1: आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत
0: और
1: दुआओं का।
0: आपको सादगिरह की बहुत ज्यादा मुबारक हो, आप ऐसे खुशियां बल्कि आज जैसे शो कर रहे हैं ऐसे खुश खुश करा करें, आप खुश होते अच्छे लगते हैं।
1: मैं वैसे अपनी जिंदगी में इतना खुश, इससे ज्यादा खुश हूँ।
0: ठीक है, और आप मेरी तरफ से अच्छा सा गाना अपने नाम लगा दे कोई, आज आपकी बर्थडे है।
1: अच्छा
0: और मैं सलाम कहना चाहूंगी रिशा को, हमना को, टिकू को, अनिला जी को, और छोटे तारीख को, और भी जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज आ रही, सबको सलाम लिखो। आपके लिए
1: वालेकुम
0: बहुत
1: अस्सलाम,
0: ज्यादा दुआएं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ऐसा है कि कॉल्स तो बड़े मज़े मज़े की हैं, आप तमाम की मोहब्बतों का और दुआओं का बहुत शुक्रिया जी। आबाद रहें, खुश रहें, रब ताला आपके हक में तमाम दुआओं को कबूल फरमाएं।

अच्छा, मैं एक और बात शामिल करता चलूं कि इत्तफाक की बात ऐसे है कि मेरे भाई, मेरे बड़े भाई सैयद साकिब अली शाह, उनकी भी सालगिरह 8 जून को ही हुआ करती है और 5 साल बड़े हैं मुझसे। तो ये आप सबकी जानिब से मुझे भी डेडिकेट किया जा रहा है और मेरी जानिब से मेरे भाई साकिब के लिए ये खूबसूरत सा ट्रैक।

हम माटी में सो जाएंगे। हम माटी में सो जाएंगे, हम आज बहुत बेनाम सही, गुमनाम सही, थोड़े थोड़े बदनाम सही। ये शेर बहुत बेकीमत हैं जो लिखते हैं, ये ख्वाब हमारे झूठे हैं जो तकते हैं। हम लफ्जों मिसरों के बेली, हम तन्हाई के मारे हैं, हम पंछी हैं बन जा रहे हैं, एक बात मगर सच कहते हैं, हम जीती बाजी हारे हैं। हम माटी में सो जाएंगे, हम आज बहुत बेनाम सही, गुमनाम सही, थोड़े थोड़े बदनाम सही। ये शेर बहुत बेकीमत हैं जो लिखते हैं, ये ख्वाब हमारे झूठे हैं जो तकते हैं। हम लफ्जों मिसरों के बेली, हम तन्हाई के मारे हैं, हम पंछी हैं बन जा रहे हैं, एक बात मगर सच कहते हैं, हम जीती बाजी हारे हैं। कल याद करोगे तुम हमको, सब गजलें नज़में छानोगे, औरों से कहोगे हंस हंस के इस लड़के को हम जानते हैं, लफ्जों का राजकुमार था ये, जज्बों से मोती चुनता था, अब माटी ओढ़े सोता है, अब और कई लिखने वाले, अब और कई पढ़ने वाले, अब किसको याद है जाने दो, अब किसको याद है जाने दो। हम माटी में सो जाएंगे, हम आज बहुत बेनाम सही, गुमनाम सही, थोड़े थोड़े बदनाम सही। ट्रैक शामिल करता हूँ जनाब, इससे लौट कर आऊंगा। मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद, 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। 1:41 हुआ, चाहते हैं सुनते रहे।

0: तो जी आज का प्रोग्राम खालिसतन रहा मेरे नाम। कुछ देर बाकी है आपकी और मेरे साथ की, और पैगामात पहुंचे हैं आपके। अरसलान राजपूत हैं शेखुपुरा से और तारिक लाहौर से हैं। अब्दुल्ला अंसारी हैं सियालकोट से। आप तमाम ने सालगिरह की मुबारक दी और सलाम पेश किया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा असदुर रहमान हैं हमारे साथ, जन्नत सलीम हैं। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: मैंने सोचा थोड़ा शायरी के सेगमेंट में भी हिस्सा डाल लूं।
0: ठीक है, डालें।
1: नीला बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: ठीक है।
1: पारस की ये वो है, मैं पढ़ती हूँ। बस यही काफी नहीं हसी भी हो। बस यही नहीं काफी हसी भी हो, वो तेरे शहर का मकीन भी हो। मैंने दिल को किया था सजदा रे, उस पर उसने कहा जबी भी हो।
0: जबी भी हो, बहुत अच्छे।
1: उसने कहा जबी भी हो, बाग में हो या किसी खराबे में।
2: तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाबी
0: भी हो। फूल तो फूल है कहीं भी हो, बहुत अच्छे।
1: सोच बदले, सोचने का अंदाज बदले, सहाफत आज का लास्ट के दोस्तों में।
0: ठीक है।
1: या तारीख की दुरुस्त सिम, सीधी बात पीटर सलीम कम नहीं पारस, पीटीवी न्यूज़ पर सर के चक्कर ही कम नहीं के पारस, और जहां घूमती जमीन भी हो।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
1: बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, सलामत रहे सबके, बहुत सी दुआएं। और नेक्स्ट प्रोग्राम हम प्योर शायरी के नाम करेंगे।
0: ऐसे ही है,
1: आज स्पेशली आपके नाम का। थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज। दिया आवान हमारे साथ हैं, अजीम रफ़ीक हैं, असद अब्बास हैं और आमिर शकील हैं, जीमल हैं, मुस्तजाब हुसैन हैं, सितारा हैं, और इसके अलावा रिजवान राजपूत हैं, आयशा मसूद हैं। रियाज भट्टी हैं। आप तमाम की शिरकत का बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, बहुत सालगिरह मुबारक हो।
0: बहुत शुक्रिया जी। कौन है, कहाँ से?
3: जी गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ, सियालकोट से, और मैंने पहली दफा कॉल किया आपसे।
0: अच्छा, आप
3: अच्छा लगा।
0: अच्छा, पहली दफा कॉल किया। आप प्रोग्राम सुनते हैं रेगुलर?
3: जी मैं इंशाल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ी बेताबी से सुनता हूँ सर।
0: तो आज पहली दफा आपने जसारत कैसे की प्रोग्राम में कॉल करने की? आप भी डरते थे? आप भी डरते थे क्या?
3: क्योंकि आपकी आपकी शायरी, आपकी बातें बहुत कीमती हैं सर, बहुत कीमती हैं। ये उनके लिए जो समझते हैं।
0: ऐसे ही है, ठीक है
3: सर। खुशियाँ मना लेनी चाहिए, इसमें कोई गुनाह नहीं होता।
0: बिल्कुल,
3: खुशियाँ चाहिए। आपका ही फिक्र है सर, खुशियाँ चाहिए तो खुशियाँ बांटिए।
0: ऐसे ही है।
3: तो जब खुशियाँ आप बांटेंगे तो आपको भी खुशियाँ मिलेंगी ना।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही।
3: तो इंसान है ना सर, इसको भी हक है कभी खुशी कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त रोता ही रहे। नहीं सर, ये बहुत अशरफ और मखलूकात, बहुत मकाम मरतबा है इंसान का। तो इसको खुशी भी मना लेनी चाहिए, इसमें कोई गुनाह नहीं है सर।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसे ही है।
3: हाँ, तो बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके, इसलिए मैंने कहा कि आज इंशाल्लाह उनको सालगिरह की मुबारक भी दे दूं। और बहुत मजा आ रहा था सर, बहुत खुश हूँ आपका। ऐसा भी पूरा प्रोग्राम जो है ना, वो आप ऐसा भी किया करें।
0: ठीक है,
3: बहुत अच्छा लगा सर।
0: ठीक है जी, ठीक
3: है। आपकी शायरी आप बहुत अच्छा लगा, आपके मैंने इनके प्रोग्राम भी सुने, वो भी बहुत अच्छे थे। तो कभी कभी इंसान खुशी भी देख लेनी चाहिए। गुनाकार तो नहीं है जो वो रोता ही रहे।
0: हाँ, अलामा इकबाल साहब ने एक खूबसूरत शेर कहा कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो कभी कभी सीटी भी बजा लेनी चाहिए।
3: बहुत खूबसूरत, वो बहुत अपने जमाने के वो वली थे।
0: बिल्कुल ऐसे ही है।
3: अलामा साहब शायरे मशरक हुए, वो सियालकोट के ही है, मैंने इनका घर भी देखा है। तो बहुत अल्लाह पाक ने ऐसे इंसान भी चुने हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि खुशी भी देख लिया करो, मुस्कुराना भी सुना था सर।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है।
3: हाँ, तो आप सलामत रहे। और ये जो बात आप कर रहे थे ना कि हजारों साल, ये जो एक मोहब्बत की कुफियत है सर।
0: बिल्कुल ऐसे ही
3: सबको है कि हजार साल किसी ने नहीं जीने।
0: बिल्कुल ऐसे ही है,
3: ये तो एक मोहब्बत में बंदा बात कर देता है ना।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल।
3: इतनी मोहब्बत, मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है सर।
0: जी हाँ,
3: जैसे इश्क की कोई इंतहा नहीं ना। इश्क और मोहब्बत, मोहब्बत हो तो वो इश्क में तब्दील।
0: आपसे आपसे बात के तवस्सुत से मैं ये बात कहता, चलो हर जबान के कुछ असलूब होते हैं और उसमें इस तरह के जुमले उर्फ़े आम में मशहूर हो जाया करते हैं। हम अक्सर जब नेकियों का जिक्र सुनते हैं, तो आपने गौर किया हो कभी, तो आपको बेशतर जगहों पे 70 और 700 का लफ्ज़ मिला होगा कि 70 नेकियां मिलेंगी या 700 नेकियां मिलेंगी, और इस तरह के आपने जुमले सुने होंगे। तो अरबी ज़बान में 70 या 700 को इस ज़िम्रे में कहा जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना हज़ारों साल जियो तुम्हें हज़ारों खुशियाँ मिलें, इस तरह अरबी में 70 और 700 को ये वाला मकाम कहले हासिल है, या इस तरह का असलूब इस्तेमाल किया। तो ऐसी चीज़ें आपको हर जबान में मिलेंगी, हर लैंग्वेज में इस तरह के जुमले होंगे, तो वो उसका लफ्जी मानी नहीं हो जाता कि हज़ारों साल का मतलब है कि हज़ार साल ही होंगे। और ऑब्वियसली जो सुन रहा है उसको समझ होती है कि क्या बात की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही।
3: सलामत रहे, खुश रहे।
0: बहुत शुक्रिया जी।
3: भाई को भी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक।
0: बहुत शुक्रिया।
3: आपके वालिदैन का आपके साथ पर साया हमेशा कायम रहे सर।
0: आमीन।
3: हमेशा हमेशा जिंदाबाद
0: पाकिस्तान, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।

0: वक्त ऊपर जा चुका है जनाब, और ये आखिरी कॉल लूंगा, इसके बाद कुछ बातें होंगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: फिर से आ गई।
0: अच्छा, इस सारों को फिर से मौका मिल गया, सारे फिर आ रहे हैं।
1: मुझे बचाने।
0: अच्छा ठीक है
1: जी,
0: कहें कहें कहें।
1: आतुर भाई
0: जी जी,
1: मैंने कभी जाने
0: पहचानू अब मैं, अब एक थी रिमशा, एक थी हमना, और हमना है आप। ठीक है ठीक है।
1: मेरा बहुत डर लगता है आतुर भाई, इनसे ठीक कह रही थी विशाल भाई, और आपको बहुत डर लगता है। मैं कॉल नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है आपसे। आपसे क्या, आपको बीजीएम से बहुत डर लगता है।
0: मैंने कहा इसलिए उसका जवाब मैंने दिया था, इसका मतलब ये है कि जीशान और मैं दोनों ठीक प्रोग्राम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बहुत डर लगता है। मैं जीशान भाई के प्रोग्राम में तो कॉल करती ही नहीं हूँ ना, बहुत डर लगता है उनसे, उससे बढ़ के आपसे और आपकी बीजीएम से।
0: चले अगला एक प्रोग्राम हम ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं कि मैं और जीशान आएंगे सिर्फ।
1: ओके। और आतुर भाई ने ये पूछा था, कुछ लोग कहते हैं कि ये सालगिरह मनानी ना गुनाह का काम है, ये नहीं मनानी चाहिए। इसके मेरे पेरेंट्स भी मुझे कहते हैं,
0: इसके
1: सच बात है।
0: इसके ऊपर मैं भी बात कर रहा था ना कि सालगिरह देखे, हाँ, तो ऐसी चीजों को हम दीन से या रिलीजन से मंसूब खुद कर रहे होते हैं, ऐसा कहीं पर कुछ है नहीं। ठीक है, आप एक
1: पांच जून को मेरी भी सालगिरह थी।
0: देखें आप मुझे ये बताएं, आज क्या तारीख है? आठ जून है ना। अब 8 जून, आप हम 8 जून के मुताबिक चल रहे हैं, आप की पूरी जिंदगी जो है वो इस कैलेंडर के मुताबिक है। ठीक है, आप 2026 के साल में हैं। आपकी आप अगर आप देखा जाए तो एक इस्लामिक कैलेंडर भी मौजूद है। ठीक है, आप इस वक्त पूछे कि आज उसकी क्या तारीख है तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप ये कह दें कि आप पूरा साल तो इस कैलेंडर के मुताबिक गुजारेंगे। 2026 चल रहा है, ये जून का महीना है, ये जुलाई का महीना है, ये महीना, ये महीना है, हम जहाँ भी जाएंगे यही सब कुछ लिखा जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा खुश हो जाएंगे तो वो गुनाह हो जाएगा किसी एक दिन को लेके, ये कैसे होगा? आपकी आपकी जो है वो नोटबुक्स के ऊपर जो तारीख लिखी जाएगी, अगर वो ये वाले कैलेंडर की लिखी जाएगी तो गुनाह नहीं होगा क्या? हाँ, तो ऐसी चीजों को हम मंसूब खुद करते हैं, जबरदस्ती करते हैं मंसूब करके, उससे हम गुनाह सवाब नापने तोलने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो उस पर तहकीक कर लेनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं, जिनके ऊपर हमें ये देखना चाहिए कि ये गुनाह है, ये सवाब है, वो जरूरी चीजें, उनको हम जरा पीछे रखते हैं, और इस तरह की चीजों के ऊपर हमारा ज्यादा जोर होता है तो तब प्रॉब्लम आती है।
1: मैंने ये पूछना था आपसे, आतुर भाई इस तरह फनी प्रोग्राम क्या करें, आप बहुत एंजॉय कर रही हूँ प्रोग्राम में, सुनती ही हूँ आपका प्रोग्राम।
0: चलें ठीक है,
1: आज बहुत मजा आ रहा है सुनने का, फनी क्या करें, थोड़ा सा प्रोग्राम हंसा करें, बहुत अच्छा लगता है।
0: ठीक है, सलामत रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें,
1: बहुत शुक्रिया।
0: तो जनाब ऐसा है कि खुशियां मना लेनी चाहिए, और ऐसी छोटी छोटी खुशियों पर भी हम डरते रहते हैं। जहां डरने की जरूरत हुआ करती है वहां हमें ख्याल भी नहीं आता इन बातों का कि गुनाह क्या है, सवाब क्या है।

जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, अपनी जिंदगी में ऐसा करके देखिए, खुद को रिवार्ड देकर देखिए, खुद को ट्रीट देकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कोई ऐसा काम जो आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत मेहनत कर लेने के बाद जब आप थक जाएं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आपके एग्जाम्स हैं, चाहे आप किसी की बात मान रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, किसी की बात मानने से मुराद के वालदैन में से किसी ने कुछ कहा, कहीं जाने को, कुछ काम करने को, और वो आपने सर अंजाम दिया और आप बहुत थक गए, तो उसके बाद खुद को एक रिवॉर्ड दीजिए, खुद को एक ट्रीट दीजिए कुछ हासिल कर लेने के बाद। वो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद को कॉफी पिलाता हूं, तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं आप। करके देखिए, कभी खुद को कोई गिफ्ट लेकर दीजिए, चंद पैसे जमा करके, कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हो। हम ये खुशियां दूसरे लोगों में ढूंढ रहे होते हैं, दूसरे लोगों से उम्मीद लगाए होते हैं, और जब कभी हमें ऐसी खुशियां मिलती नहीं हैं तो दिल बर्दाश्ता हो जाया करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। यकीन कीजिए कि वो एक शख्स जिस पर आपका बस चलता है, वो एक शख्स जो आपके नजदीक दुनिया का मजलूम तरीन इंसान है, वो एक शख्स जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत कर सकता है, वो एक शख्स जो आपका सबसे ज्यादा ख्याल रख सकता है, वो आप खुद हैं। अगर आपको तलाश रहती है किसी और की इन तमाम चीजों के लिए, तो शायद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको मिल जाए, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खुद से भी मोहब्बत करनी चाहिए। और कहा तो करता हूं कि मोहब्बत के तकाजों में सबसे जरूरी तकाजा है कि महबूब के महबूब को भी चाहा जाए। तो अपने महबूब भी बन जाइए और महबूब के महबूब को भी मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। बहुत मोहब्बत से इस कायनात को तख्लीक दी गई, खूबसूरत बनाया गया। हर शय में मोहब्बत छलकती है, हर शय खूबसूरत है, हर शय को मोहब्बत से तख्लीक दिया गया है। चाहे झीलें झरने हों, बादल हों, आसमान हों, चरिंद परिंद हों, इस कायनात की ताज़ीन और आराइश मोहब्बत से की गई है और हम इंसानों के लिए की गई है। और हमें कहा गया है कि उनका शुक्र अदा करें, और उनका शुक्र ऐसे ही अदा किया जाएगा कि जो कुछ हमारे लिए बना रखा है उससे इस्तफादा हासिल करें। हमें यूं लगता है कि शायद हमें हर चीज से बस मना किया गया है, ऐसा नहीं है। अगर गौर करके देखें तो हर चीज के पीछे आपको कोई मंतक नजर आएगी जिस शय से हमें मना किया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी होगा हम उसमें ये सोचने लग जाएंगे कि क्या ये करने से गुनाह होगा। हाँ, कुछ चीजों से जरूर मना किया गया है, लेकिन जब हम उन पर गौर करते हैं तो हमें वो मंतक समझ आ जाती है कि ऐसा क्यों कहा गया। उसके पीछे कोई वजह है, कोई नुकसान है जो है हमारा ही। कुदरत को, कायनात को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज से रोका गया है तो जब हम उसकी तह तक पहुंचते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इसलिए मना किया गया था कि उसमें हमारा नुकसान था। हमें इबादत करने को कहा गया, वो इबादत भी हमारे लिए ही हुआ करती है। वो जो दोनों जहान के मालिक हैं, उनको हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी जरूरत है कि हम उनका शुक्र अदा करें। ये हमारी जरूरत है कि हम उनके सामने सर्बसजूद हों, उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी। और ये कैसे हो सकता है कि हम छोटी छोटी खुशियों को मनाना चाहें और हमें
ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए कि इससे गुनाह होगा। हाँ, जब तक कि कोई ऐसा पहलू उसमें शामिल ना हो जो कि अखलाक से गिरा हुआ हो, जिसमें शिर्क का कोई पहलू आता हो। ये कायनात बहुत खूबसूरत है, इस कायनात को इंसानों के लिए बनाया गया है और इरादा और इख्तियार है हम इंसानों के पास, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम उस राह को चुन सकते हैं जो सही राह है, जो सीधी राह है, जो सिराते मुस्तकीम है, जो लेकर जाती है हमें नूर की जानिब, कामयाबी की जानिब। और वो कहते हैं कि हम जिसे चाहते हैं जुलमात से निकाल कर नूर की जानिब ले जाते हैं, वो बहुत मेहरबान है। आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी खूबसूरत दुआओं से नवाजा। मेरी दुआ है कि रब ताला आपके हक में उन तमाम दुआओं को मंजूर फरमाए, कबूल फरमाए जो आप करते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, जो आप बनना चाहते हैं। और यकीन कीजिए ऐसा ही है, जिंदगी में जो दरकार हो वो तकसीम करना होता है, वो बांटना होता है। करके देखिए, जो चाहते हैं आप, आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए, वो किसी दूसरे की जिंदगी में शामिल करके देखिए। सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो, चाहे बोले ना वो, लब को खोले ना वो, दिल अलग बात है अपने लहजे में भी प्यार घोले ना वो, अपना जो फर्ज है इस तरह हो अदा जैसे एक कर्ज है, कोई जो कुछ कहे उसकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। बेख्याली में ही लब अगर खुल जाए और जबां पर कभी कोई सच आ गया, यूं समझ लो कि फिर सिलसिले जितने थे दरमियां जो भी ताखाब देखे थे जो सब बिखर जाएंगे। ऐसा करना नहीं, सबकी सुनना मगर तुम बिखरना नहीं। मसले सब के सब हैं सफेदों से आ, मसलों में कभी रंग भरना नहीं। दिल में अगर प्यार हो, लब पे करार हो, प्यार ही प्यार बस हरफे इजहार हो, गर ना ये कहे दिल ना मिल पाएंगे, इस पे मत जाइए, खोटी है ये ना, इससे कुछ ना बना, इससे कुछ ना बना। दिल की बातें सुनो फासले से सही, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। रास्ता एक है, मुद्दा एक है, एक हमारी है, क्या सारी दुनिया का ही सिलसिला एक है। एक आए थे हम, एक आए थे तुम, एक है ये सफर, भीड़ कितनी भी हो अपनी अपनी जगह हर कोई एक है। नाम है गोजुदा पर खुदा एक है, बस खुदा की तरह सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। कहने सुनने से तो कुछ बदलता नहीं, रात जाती नहीं, दिन ठहरता नहीं, होने वाला है क्या कुछ भी खुलता नहीं। वक्त कम है बहुत, इतने कम वक्त में जिस कदर कर सको, जिस कदर कर सको प्यार करते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। जिंदगी में जो दरकार हो तकसीम कीजिए, खुशियां चाहिए तो खुशियां बांटिए, आसानियां चाहिए तो आसानियों का सामान पैदा कीजिए, अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पांव में चुभा हुआ कांटा निकालिए, रब ताला की नेमतों और बरकतों का नजूल होगा। कुछ अच्छा लगा हो तो दस्ते दुआ जब बुलंद होना चीज को याद रखिएगा, और कोई बात समा खराशी का बाइस बनी हो तो माजत चाहूंगा। सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले इतवार की शब आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान आतिर अली सैयद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।

वही जिंदा को मुर्दे से निकालता और वही मुर्दे को जिंदे से निकालता है और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे।